अरे जा संस्वी संकलनजी इचो चिकंग करंग लेनसन तोंसम दनिन जो लेनसन द हरजा ताही के नाम ला सोंदु तंग दोन ने लेनसन दि सोंदु गंखरवा हरजा राखी तंग ताकी तोंद बि ताकलवा शिलो इन चिचुक ताकलवा गंदग थेरंग तंग सोनम नचिन छेतिन यम बर क्वाटिन छि याट कोना बता देमो

ग हादर ओ करुता ओसर जाया जब जग खेवाय न छोटल तरी जब हालाय न तग चोसर तरपम दग उछम दग चन तग चोसर ताशो न देरनि हालाय मर ओ अन्य गते गो तरी सुम चो गोचन तासन होगा मुजिन Halag agag marot anirte ichal nor anyag marot akalag tarishu Halayang chor kipat adlang kag marujin tolar tigat anjatig khar nor Halayang yohamat atal tarin chog yachung tasag tsakujin Halayang tsag tuchin tangram son nor rago anyag andung tarishu